0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। इस समय प्रातः की 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालतूर में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधनपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांनंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे परमानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से

0: मतदाता गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: आज के आपाधापी वाले दौर में किसी से पूछो, क्या आप समय निकालकर प्रभु का ध्यान करते हैं? जवाब आएगा, समय ही नहीं मिलता। एक बोध कथा है कि एक सेठ जी का सारा समय दौलत कमाने में निकल जाता था। एक बार उनके घर एक धर्म गुरु पधारे। उन्होंने कहा, सेठ जी, जीवन बड़ा ही अनमोल है और क्षण भंगुर भी, इसलिए ध्यान के लिए भी समय निकालें। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी, मन तो बड़ा करता है, पर क्या करूं, मेरा लड़का अभी कुछ छोटा है, वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चलाने लगे, बस 2-3 साल और मेहनत कर लूं, उसके बाद तो समय ही समय है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। धर्मगुरु ने मुस्कान फेंकी, तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम्हारे पास 2-3 साल का समय है? ईश्वर के विधान को तुम कैसे समझ सकते हो? खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। धर्मगुरु चले गए। सेठ जी व्यवसाय में मगन हो गए। उन्हें अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, इसलिए प्रतिदिन सुबह थोड़ा थोड़ा पैदल घूम लेते थे। एक दिन टहल रहे थे कि एक ट्रक ने चपेट में ले लिया और वे परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्हें गुरुजी का कथन याद आ रहा था, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। समय हमें निकालना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन भर हमें अच्छे कामों के लिए समय नहीं मिल सकेगा और हम अपने ही राग रंग में डूबे रहेंगे। प्रभु भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप घंटों भक्ति में डूबे रहें और सारा कामकाज छोड़ दें। हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में अपने अपने ईश्वर को ध्यानस्थ होकर याद करें। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या पारसी, अगर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हम उनके ही दिव्य गुणों से जुड़ते चले जाते हैं। मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन निरंतर निर्मल होता चला जाता है। हम ध्यानस्थ होकर सदाचारी मानव बनकर विश्व कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ध्यान योग है, इससे जुड़ने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी शक्तिशाली बनी रहती है, चरित्र भी मजबूत होगा। इसलिए समय निकालकर कुछ पल बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हम आत्ममंथन भी करते रहते हैं। तो चलिए आज की प्रातःकालीन शुभ घड़ी में ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लेते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमर चैनल है। ये जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीनी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 9:30 और 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 और 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 5:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सात बजे समय रहेगा किसानवाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या व 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतनी बात कार्यक्रम।
1: खेतनी बात हमारा सब किसान भाई बहनन सोरा बेतकी नानो बहनो राम राम राम राम। सब भाई हवार हवार ने टाइम में खेती बाड़ी में काम में लग गया था। कहीं किसान भाई अपन एटला दड़ा मानसून की वाट जोई रहा था, मानसून भी आ गई है। नवा खेती बाड़ी में काम अपने समय पर हाल हंगा आज करें जी खरीफ फसल की बुआई में समय हमने साली रो है बुआई समय पर कर भी जाए क्योंकि अपन टाइम पर खरीफ में बुआई नहीं करेंगा बाद में जाते कहीं मानसून रुकी जी तो आप नुकसान थी सके। એટલે જે ભી ફસલ આપણે બુવાઈનું કામ કરવું હોય એ સમય ઉપર કરી દેવું હોય, મક્કાની બુવાઈ હે યા સોયાબીન હે યા ધાનની ફસલ કરવી ઉડદ હે કપાસની ફસલ હે તો એનું સમય ઉપર આપણે કરી દેવું હોય ને બુવાઈ કરતી વખત બી આપણે છોટી મોટી વાતોનું ધ્યાન રાખવું હોય ભાઈ બઢિયાવાળું બીજ લેવું હોય ને ઉપચારિત કરવું જરૂરી હોય કેમકે ઉપચારિત ક્રિયાઓમાં આપણને બુવાઈનું કામ કરી દઈએ તો આપણું ઉત્પાદન હાનિ થઈ શકે એટલે સહી બી

अरेस्ट अपन बुआई कर भी है किसान भाई बुआई करते वक्त भी अपन छोटी मोटी बातें ध्यान रखो कि भैया खेतर में नमी जरूरी है। बीज अपना बुआई करो तो बुआई करो, क्योंकि नमी नहीं होना अपन बुआई कर देगा फसल जी बीज है ये अंकुर नहीं थी सके, एटले अपन नमी मिजाज करी ने पास बुआई कर भी है। समय खास ध्यान रखो जरूरी है, देसी खातर वगैरह भी ना हुआ तो इन्हें अपने ना कि देव हुए सोना सा दाड़ा है, क्योंकि आना दाड़ा में अपना पशुधन में अपन खास कर हाँ हम बड़ा जरूर कर भाई पशु में खेती बाड़ी एक बीजा मिले जुले हैं। पशु ने आना समय भाई अभी सोना सा दाड़ा आई गया आना सोना सा दाड़ा में खास कर पशु में बा पशु कोड है हर रोज सफाई कर रही है, पशु घर जो पशु बांधवा कोड है आस पास अपने पानी खड्डा है तो इकट्ठा नहीं थे वो भी क्योंकि पानी इकट्ठो था वह थकी हूँ का मच्छर मक्की पास यही थकी पंप है मच्छर मक्की थकी खास कर मोटी बीमारी मच्छर मक्की थकी था एटले उन्हें पनप्पा नहीं देवी है कहीं खड्डा है तो उन्हें जल निकासी कर दी है। हाजमा टाइम में पशु ने धुआं वगैरह भी कर हुआ है ताकि मच्छर ही दूर जा सके, क्योंकि निन्नी पत्ती है देसी उपचार अपन करीने धुआं करूंगा जी मच्छर है ये दूर पंखा है तो इन उपयोग हवा थकी भी मच्छर है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना खेतनी बात कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब पेश है लोक संगीत गोपाल पंड्या व साथियों के स्वर में।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, भी आपने सुना गोपाल पंड्या व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं सीमा भट्ट।
1: आत्मविश्वास बरसात में एक छाते की तरह है जो बारिश को नहीं रोक सकता, पर उसमें खड़े होने की हिम्मत देता है। उसी तरह आत्मविश्वास हमारे जीवन में सफलता लेकर नहीं आता, लेकिन सफलता की राह में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें सामना करने की हिम्मत देता है। हम आत्मविश्वास के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बात आती है आपका आत्मविश्वास कैसा है, ऊंचा या नीचा। उच्च आत्मविश्वास वाले लोग हमेशा जिंदा दिल होते हैं। वो हमेशा जिंदगी का मजा लेते हैं, उसे सही ढंग से जीते हैं। उच्च आत्मविश्वास वाले लोगों का दिमाग एक जगह पर एकत्रित होता है। वे नई संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी गलतियों को मानकर उनको सुधारते हैं ताकि बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो नहीं जो दूसरों को अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कम आत्मविश्वास वाले लोगों की। उनके जीवन को हमेशा दूसरे लोग ही चला रहे होते हैं। जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं। ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, उन्हें कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कोई भी जोखिम लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि क्या करना है, ज्यादा काम करके जितना है बहुत है। ये लोग असफल होने से डरते हैं, अपनी गलतियों को छुपा देते हैं, और फिर भी सोचते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मेरी मायने में आत्मविश्वास बढ़ता है कार्यकुशलता से, और कार्यकुशलता आती है ज्यादा ज्ञान से, और ज्ञान आता है आपके व्यवहार से। अगर आपके पास ज्ञान है तो आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा, और अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो योग्यता भी आ ही जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा। सभी में कोई ना कोई ताकत होती है और कोई ना कोई कमजोरी भी। बस अपनी ताकत को पहचानिए और उसको और ताकतवर कीजिए, और अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। उदाहरण ही ले लीजिए कि मान लीजिए आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप सबके सामने अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं नहीं बोल पाते, आपके शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है, तो ऐसे में आपको हिम्मत करनी चाहिए, और इसके लिए आपको कांच के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए, और आप देखेंगे कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। उच्च आत्मविश्वास के लिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छे ख्यालों को जगह दीजिए, बुरे ख्यालों को निकाल फेंकिए। दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, पर यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं या बुरी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आज ही अपने भूतकाल में किए गए अच्छे कार्यों की सूची बनाइए, जैसे

परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, किसी की मदद करना और भी छोटी छोटी बातें। अब उस सूची को पढ़िए, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। अब हम जानेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ तरीके। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी गुण है। जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर एक व्यक्ति में आपको ये गुण दिख जाएगा, फिर चाहे वो कोई अभिनेता है या कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या आपको पढ़ाने वाला शिक्षक। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर एक किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दीजिए। अपने पहनावे पर, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है, और वही अगर आपके कपड़ों का चुनाव गलत है तो आप स्वयं ही असहज महसूस करेंगे। आप कपड़ों में जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन सही कपड़ों का चुनाव करें। वो करिए जो एक आत्मविश्वासी इंसान करता है। जैसे कक्षा में आगे की सीटों पर बैठिए, कक्षा में, सेमिनार में और अन्य मौकों पर सवाल पूछिए, जवाब दीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज में मत बोलिए, नजरें मिलाकर बात कीजिए, नजरें मत चुराइए। किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए, चाहे वह किसी विषय का ज्ञान हो, संगीत हो, नृत्य हो या कोई खेल। हमेशा सोचिए कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आप स्वयं किसी से कम नहीं है। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है। गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने आज तक कोई गलती ना की हो? गलतियां करना व गलतियों से सीखना मनुष्य का स्वभाव है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे बार बार दोहराना गलत है। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए आज मैं सफल हूँ। जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती है उसे बार बार कीजिए। गांधी जी की यह बात मुझे बहुत प्रेरित करती है कि पहले लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं। सबसे अधिक आवश्यक है कि आप खुद से प्यार करें। गुण और अवगुण तो हर किसी में होता है, किंतु सामान्यतः ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने गुणों को भूल अवगुणों के कारण आत्महीनता का शिकार हो जाता है। हीनता की एक वजह सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करना होता है। जब आप किसी सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो खुद को उसके सामने हीन महसूस करने लगते हैं, और जिसके कारण आपके अंदर निराशा पनपने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। सबसे पहले तो आप अपने मन पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें केवल गुण ही गुण हो। हाँ, यह हो सकता है कि जो गुण दूसरे व्यक्ति में है वो आप में ना हो, तो फिर आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझे। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने गुणों के लिए अपने ऊपर गर्व कीजिए। अपनी कामयाबियों को ध्यान में रखिए। यदि आप अपने आप को ही पसंद नहीं करेंगे तो किसी दूसरे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप में खूब काबिलियत है और आप दिखने में भी स्मार्ट है, पर क्या फायदा अगर आप में आत्मविश्वास ही नहीं है। माना कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आत्मविश्वास आना मुश्किल लगता है।

0: लेकिन नामुमकिन जैसी चीज भी नहीं है। यदि आप किसी के सामने बोलने में भी सकुचाते हैं तो तय मानिए आपकी सफलता के रास्ते में रुकावटें भी कम नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे आपके स्वयं के आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इतना ही नहीं, यदि आप में आत्मविश्वास है तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। भगवद गीता में भी यह बात कही गई है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इच्छित वस्तु यानी आपकी मंजिल को पाना तभी संभव है जब आप में खुद पर विश्वास हो। फिर क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए जिससे आप अधिक से अधिक आत्मविश्वासी बन सफलताओं को गले लगा सके।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता, और वार्ताकार थी सीमा भट्ट। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
2: सुरीली धड़कन हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कल्पना के घन बरसते, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर का गाया ये गीत आपने सुना। ऐसे भरत व्यास ने लिखा था और वसंत देसाई ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

है काहे मचावत शोर, देखो दी इस ओर, मैं तो हूँ तेरा सावरिया। राधे काहे

0: ओ राधे का है मचावत शोर,
1: गीतकार भरत व्यास का लिखा गीत आप सुन रहे थे लाल किला फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की थी, संगीतकार थे।

0: एस एन त्रिपाठी। जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

प्यार की जीत फिल्म का गीत, प्यार की प्यास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज़ें थी, भरत व्यास ने इसे लिखा था और वसंत देसाई ने धुन बनाई थी। हम ही राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

हमें रहे प्यार के इस कार्यक्रम में आज हम श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास को। सारंगा फिल्म का गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था और सरदार मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये है श्रवण कुमार फिल्म का गीत।

0: श्रवण कुमार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर की, रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे शिवराम।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल

0: यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सिंघल द्वीप की सुंदरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर मुकेश की थी। इस गीत को भरत व्यास ने लिखा था और इस गीत की धुन एस एन त्रिपाठी ने बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया

0: के आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर उज्जैन देवास धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के

सल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा।

0: किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रूपये के सौदे स्वीकृत, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकशक्ति लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकशक्ति ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अपील है

सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भर नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारा विषय है झरोखा। श्रोताओं, झरोखा सिर्फ दीवार में बना एक छेद नहीं है, वो आंख है घर की। बाहर की दुनिया को अंदर देखने का और अंदर की सांसों को बाहर भेजने का रास्ता है। पुराने महलों से लेकर गांव की मिट्टी के घर तक झरोखे ने न जाने कितनी कहानियां देखी हैं।

श्रोताओं, झरोखा मतलब छोटी खिड़की। राजस्थानी हवेलियों में पत्थर की जाली वाले झरोखे होते थे। गांव में लकड़ी की दो पल्ले वाले

शहरों में लोहे की ग्रिल वाले, पर काम सबका एक, रोशनी लाना, हवा लाना और दुनिया से जोड़ना। राजा महाराजाओं के दौर में रानियां झरोके से ही जनता को देखती थी, पर्दा भी रहता था और जुड़ाव भी।

श्रोताओं, भोर की पहली किरण जब झरोखे से कमरे में आती है तो पूरा दिन उजाला हो जाता है। चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ने का मजा ही अलग है। श्रोताओं, बूंदे जब झरोखे की लकड़ी पर गिरती हैं तो संगीत बन जाता है। हाथ बढ़ाकर पानी को छूना बचपन की सबसे बड़ी खुशी।

श्रोताओ, माँ का बेटे के घर लौटने का इंतजार, प्रेमिका का प्रेमी की राह देखना, झरोखे ने सबसे ज्यादा इंतजार देखा है। श्रोताओ, दादी का वहीं बैठकर स्वेटर बुनना, पापा का वहीं से आवाज लगाना, बेटा शाम हो गई घर आ जा, झरोखा यादों का एल्बम है।

श्रुतम अब फ्लैट में बड़े बड़े शीशे के विंडो हैं, एसी चलता है, झरोखे बंद रहते हैं, अब हवा कूलर से आती है, रोशनी ट्यूबलाइट से, पर जो सुकून झरोखे से आती ठंडी हवा में था वो एसी में कहां। हम अब बाहर झांकते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर असली झरोखा सूना पड़ा है।

श्रोताओं, झरोखा हमें सिखाता है कि बंद कमरे में भी दुनिया से जुड़ा जा सकता है। वो हमें हद में रहना सिखाता है, न पूरी तरह बंद न पूरी तरह खुला। जिंदगी भी झरोखे जैसी होनी चाहिए। अपने में सिमटे रहो, पर दुनिया को देखना मत छोड़ो। दीवारों में कैद होकर भी आसमान देख लेता है। झरोखा छोटा सा होकर भी सपने बड़े दिखा देता है। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

एफएम बैंड 1.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में, प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
3: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 17 जनवरी 2000

0: 2018 में इसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन भी उसका वही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है, इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
1: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
2: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां 2 दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
3: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। 2 दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के 30वें संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में 2 दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के भावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एफएम बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का

संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था, लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी, लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले

1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक, भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

0: 1960 में आई माया मच्छेंद्र। इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।
1: साल

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छिंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा जा जा रे।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे।

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत मिश्राई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर विक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कहूँ वो लोग बाद में आए थे, टांगा वाला पीएस संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर भजंती माला, उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से भूषण भानू बनी, वो गाना खरीद कर भूषण भानू बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: जीत गया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंड में तले हरी रुके दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये।

दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको

बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये

0: बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जब जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004, बारिश के दिन, संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह ने की।
2: आज के फनकार।

प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थी, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग, किसी फलिये की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।

उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती।

0: गए।
1: वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी,

उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ।

थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। किसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगे, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहां। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

आंच थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा के प्रिय सहेली थी, शुरू से ही

0: के खिलाफ थी पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है, प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है, प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है, आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है, उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा, याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते, नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी, उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती, वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा

टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमनी से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? मना कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी की तरह ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत तो होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपने राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को
अंधेरे में कुछ

पूछती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उचट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते।

ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। शंकर, सूरज और जॉय की आवाज में गीत। संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, अगली पेशकश डेयर जिंदगी फिल्म से अमित और जसलीन की आवाज में, बोल हैं कौसर मुनीर के और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं गोलमाल 3 फिल्म से नीरज श्रीधर और अंतरा मित्रा की आवाज में गीत। बोल है कुमार के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश हॉलिडे फिल्म से कुणाल गांजावाला के स्वर में, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लब सोनू और नेहा कक्कर की आवाज में फिल्म क्वीन से। बोल हैं अभिता दत्त के और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं रेयर फिल्म से राहत फतेह अली खान, तनिष्क बागची और असीस कौर की आवाज में, बोल है मनोज मुंताशिर के और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश फिल्म सिम्बा से आवाज है राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष्क बागची की, और बोल हैं रश्मि विराग के, और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट

0: पोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरूणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरिटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़, आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

छोरी चंचल चकोरी एक गांव की छोरी मेरी नवल नवेली अल बेली नार समझाए पके तोहे बार बार मन छुई मुई करू कान जतन छूते ही हाथ कुमलाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जो भी
0: आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का गाना पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारा ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही

पसंद करते हैं, लेकिन हाँ हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं फिल्मी गजलें हैं जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों ये शास्त्रीय गजलों की छंद तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो, लेकिन हाँ जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत

सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो

जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूं। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से है वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है, आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एसएन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिन्दी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा है विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात कैसे पेश करूं मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वह जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है, ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट कर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है, गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने, तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाए, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप।

और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूं। हिन्दी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं, साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीला सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूं, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे

हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर के रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल।

महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गायी जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है, आज मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लताजी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास, नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूं इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूं, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गार फिल्म गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है, इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूं। बोल है

माउंट शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलू पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम वो दायरा जो है गजल का उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल, फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की पंक्तियां मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आंखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूसा आज के इस कार्यक्रम

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदे नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो, सूखे खेतों को हरियाली से भरना हो, या फिर प्रकृति को नया जीवन देना हो, बद्रा हर बार अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। दूर क्षितिज पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। उनकी छाया में पेड़ पौधे झूम उठते हैं और हवाओं में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है।

भारतीय साहित्य, संगीत और लोक गीतों में भी बद्रा का विशेष स्थान रहा है। कभी इन्हें प्रेम का संदेश वाहक माना गया तो कभी विरह की वेदना का साथी। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक बद्रा का आगमन हर किसी के मन में एक नई उम्मीद जगा देता है। बच्चों के लिए ये कागज की नावों का मौसम होता है, किसानों के लिए समृद्धि का संकेत और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यही कारण है कि बरसात और बादलों का जिक्र आते ही मन अनायास ही गीतों और कविताओं की दुनिया में खो जाता है।

बद्रा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन कितना आवश्यक है। जैसे सूने आकाश को बादल सजाते हैं, वैसे ही आशाएं और सपने जीवन को अर्थ देते हैं। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ताजगी, हरियाली और यादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष सावन के साथ लौटने वाले बद्रा केवल मौसम का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी पुराने मित्र की तरह प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष बनी रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई।

0: इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है।

0: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के

0: नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत का हाथ

हुस्न तेरा गुलाम आज वल्ला।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काले गांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म

0: इस युगल गान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीव।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: ओह, हमारे साथ ये यज्ञ सेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञ सेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीख

की मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा,
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से

0: इसने तो स्कीट के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर
4: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी,

0: शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
1: जो आज्ञा।
2: लीजिए महाराज, जहाँ तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
3: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
2: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
0: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
3: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
0: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
4: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया? मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
4: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
4: उपाय? उपाय? हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
4: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
5: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
6: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
6: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
2: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
6: जो आज्ञा।
2: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
4: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच

0: गए। आ हा हा, तुम्हें देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं।
0: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
1: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
0: चलिए झूला गृह की ओर।
1: झूला गृह की ओर?
0: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
0: अरे कैसे अचरज की बात है कि...
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या क्या मालिका आ रही है?
0: और क्या,
1: तो सब जवाब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
0: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
1: ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
0: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
1: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
0: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
1: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है, ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
0: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायक का बकुला बलका उसके पास पहुंच गई।
1: अरे ये बकुला बलका सा श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
0: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है। और उसी के लिए माल

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। ले सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढें।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: है? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पाँव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साज श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी चल जाता है। क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
5: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
0: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
5: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
0: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है।
5: हाँ।
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया। आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
5: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ।
5: हाँ मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
0: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
5: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी

0: प्रेम नहीं।
1: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
0: हाँ, क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
1: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
0: सच?
1: पर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दू। लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रहे हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावलिका, वाह मित्र। बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न भूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य इसमें धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
0: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
1: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्रे, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखा?
3: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सैनी
0: वो जगह ही रहता था, मतलब और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुन दिया।

0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, क्या रे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है। हाँ,
0: बोले लिख लेना कोई बात नहीं। हाँ? इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं।
1: हाँ।
0: आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहां से हटा दीजिए आप, और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा। धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह। संगीतकार विजू,
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी

0: सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगदीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा
1: गाया,
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें न पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, न जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बनके, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में, हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे।
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे बर्दाश्त के कितने हैं।
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। तो, क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है। वो अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करें

0: कहेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए, मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई, और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा, और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
1: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत है, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
0: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ तो वैसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा।
0: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम, मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे, मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया, मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल लिखवा,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है,
0: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने, हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है, फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी, अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं,

0: लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो काम करके क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: जी, मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूं, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता। रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली अच्छा, यहाँ पर भी चुनरी आई,
1: चुनरी अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार

0: उसको सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
1: अच्छा।
0: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
1: जिनका जिक्र भी आप
0: जिक्र
1: कर रहे
0: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
1: अच्छा।
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
1: जी जी।
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
1: हाँ।
0: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
1: अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया। हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा आप शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप,
0: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
1: जी जी।
0: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेना,
0: मैं कुछ नहीं लेना।
1: बहुत बड़ी बात सर।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए तूने जिंदगी में आके जिंदगी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
0: नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता हूं।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नए नए तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीत

0: गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
1: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फुहड़ पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
0: बहुत प्यारे तरीके,
1: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
0: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
0: वो कालजयी हो गया।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
0: जी, जी।
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
0: जी
1: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
0: बिल्कुल।
1: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
0: बिल्कुल।
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
0: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया,
1: फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
0: दूसरे गाने का।
1: नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में न चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
0: जी।
1: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
0: अच्छा।
1: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 350-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है।

0: और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है, अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूँ, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ गया। वहां जल्दी अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैं लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी। और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया गया। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माँ ही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा की शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए आपको ले चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर। अब से कुछ ही देर में

ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 5:35 पर और रात्रि के ठीक 9 बजे।

में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम के ठीक 7 बजे। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा रात्रि के 10 बजे और 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

आइए अब आपको ले चलते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रामचरितमानस गाना को सुनाया जाएगा 6:30 पर। खेतनी बात प्रसारित करेंगे हम प्रातः के 6:45 पर। 6:50 का समय रहेगा आदिवासी लोक संगीत का और 7:20 पर आप सुनेंगे वाताय

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात प्रातः के ठीक 8 बजे। कार्यक्रम कुछ दिल से की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपको सुनाया जाएगा प्रातः के 9:10 पर और 11 बजे। फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे आप 11:30 पर और 12 बजे से आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

अभी कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.3 MHz पर शाम के 5:05 हुए। अब प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा का गाया यह गीत।

0: सीमा मिश्रा के गाए इस गीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम मां ही चैनल है। शाम के 5:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में

0: आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं फ्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सुराजी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने हरियाणा के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
0: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
1: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
0: अच्छा,
1: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ। जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
0: तो ये कब शुरुआत की आपने?
1: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना है, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
0: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
1: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
0: जी,
1: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
0: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
1: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
0: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
1: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
0: अच्छा।
1: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
0: अच्छा।
1: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
0: अच्छा।
1: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
0: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
1: सोनीपत में ही।
0: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
1: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश

0: लिए कार्य करना है। तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे

0: शासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, अगर ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि थ्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण की या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। तो जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरह बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगा।

0: सुना है, आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पत्तल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होकर दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी, अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े थैला प्रयोग करते थे और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो

0: साल की हजारों पॉलीथिन हो गई, और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, बताऊं अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण की गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर चार जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल आप प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों आप प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है तो पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है तो मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाए वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है। किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे

0: का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू मर्दा थी मक्का कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

अभी आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुना। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल एफएम बिंडिक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:35 को अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो भी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज

0: आधारित समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो भी बहार आई गांवों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे हमारा विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया गया। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: श्रोताओं, अब समय हो चुका है समाचारों का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में

0: का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मेन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया

0: मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉ किरोड़ीलाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो केवल बिक नहीं पा, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है महाराष्ट्र है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएंगे।
0: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। दो दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9,651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9,651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और

0: कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज के जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशहाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं की जाँच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। CMHO डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वॉयल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों 1 दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। CMHO ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलोअप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया।

0: जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में आए देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा काम आरी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावर सत्र 20 जुलाई में राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन में उगनी और लंकाऊ हल्का में भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा काम री शुरुआत कीनी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। वह चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दौड़ी बनावन री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावन रा काम री शुरुआत कीनी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ही जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काओं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन कीनो। ई मौके वे कहो के रिफाइनरी री आ परियोजना विकसित और खुदरेपाण उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो के तेल साफ करण रा ई कारखानाओं प्रदेश माए मोकड़ा लोगां सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी कहो कि पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टीम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण ई चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। वह कहो कि दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानी जूझ रिया हा, वहां वगत ही भारत आगे री सोच और नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के

0: सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: प्रधानमंत्री कहो कि भारत तेल साफ करण रा बूता में लगातार बधावन सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो कि सरकार दुनिया में तेल गैस रा संकट बीच रसोई गैस रा मोल माथे काबू रखने में कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागन वाला नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपया। ये मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरा टैंकर ही रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन कंट्रोल यूनिट रो दौरा कर कच्चा तेल न साफ करण री प्रक्रिया तकनीक और उत्पादन की जानकारी लीनी। वह एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी रो पौधो ही रोप्यो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन में राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
2: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
1: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। इन पहली प्रधानमंत्री जोधपुर में हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। इस मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रुपए री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल में जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनो है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में जिला रा प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माई नई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। इस दौरान 54,000 नौजवाना ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पचपदरा माई राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर माई नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर में राखी जिया रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागे, राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल भया। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई में शुरू फैला। 13 अगस्त तक चलन वाला पावर सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सत्र में देश रा भला सारू खास मुद्दा माथे सार्थक बहस चर्चा और फैसला करने माथे ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश में जैविक खेती रा हलका में आदर्श बनावण सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ता काश्तकारा ताई पहुंच बधावण री कोशिश तेज करती।

0: कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा में राखी जाए कार्यक्रम में बतायो कि किसानों ने जैविक उत्पादन न बेचने लायक बनावन जनता ताई वारी जानकारी पुगावन और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादन की बिक्री सारू जिला में ठौड़ मुहैया कराई जावेला।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारे पास की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी हमारे संस्थान हैं वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट ला के निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराए।
0: सिरोही जिला रा आबू राज माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माए आज विधि और न्याय मंत्रालय री खास उपलब्धियां बारा माए राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कीनो। दो दिन रा ई सम्मेलन माए देश माए न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और कानून बारा माए देश भर आया कानून रा जानकार विचार कर रहा है। अरब मौसम राज्य में भय रही चौमासारी बिरखा बीचे लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश रा लंकाऊ ऊबरी जिला सागे आतुड़ी हल्का माए कई ठोणा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून रे उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू रहते निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन माए राज्य रा कुछ और हल्का माए चौमासारी बिरखा भवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालते रहवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का माए कठा कठा भारी और कठा कठा घनी भारी बारिश सारू चेताई चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला विकास रा कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हूँ। राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज हुई। आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी वासवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.3 MHz पर शाम के 7 बजे आप किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने बोना ने धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाइयों बोने सब खेती बाड़ी नु काम काज करवा में लगे था कहा केम के अपने जे भी रबी फसल नी बुवाई वगैरह करवा टाइम आ गयो है ने घना भाई ने पानी वगैरह पहले पड़ी गयु तू तो पेरा ही भी गयु है ने घना भाई ने अजी पानी पड़वानी वाट भी जोई रहता तो पड़ी भी गयु है तो अजी कोई पेरवानु काम भी करी रहता कहीं कि देखो लगातार पानी पड़ी कर है तो भी पेरवा में अपने समस्या आवे थोड़ा वराब मले तो पास ही पेरवा नु काम करे ने घना भाई ने पहले पेरा ही गयु तू तो ये उगी भी आई हुआ है पर अपने जिम भाई की इस कार्यक्रम के माध्यम देखे हुए कि जे भी अपने कामकाज करी रहे ध्यान थी सावधानी देखी करव जरूरी है क्योंकि घना भाई पहले थोड़ा बेग दड़ा पानी पड़ी गयु तो पेरवा काम भी कर दी तू तो पास वैस में खूब टाइम पानी नहीं पड़ू तो ये उग्यू भी नहीं तो मन एम भी थी ना भाई अमन।

फिर करवू पड़ू। पर आपने कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करवी, क्योंकि देखो आप पानी पीव पड़ी रहो कि आई खरी पड़े पर नहीं पड़त, तो आना गाम में पेला गाम में भी थोड़ा आपने देखी ने काम करव जरूरी है। एम नहीं कर भाई आने तो पैर दीदू मारे पैरव बाकी रह गयु है, तो आपने देखो मिट्टी वगैरह इन अनुसार आपने ध्यान रखू कि भाई बुआई ने लायक आपने थी गयु पानी पड़ी गयु तो आप बुआई करे, क्योंकि जल्दबाजी कर दंगा देखो आटो मोगा भावनी आता सीज आप लई ना बीज नहीं मैं अपने नाखी दीदू बस नाखवा बाद तो पास अपने लेवा गया नहीं ई पास पंद्रह दाड़ आपने वाट जुवी से कई उगे कि नहीं उगे तो आप पंद्रह दाड़ा भी निकली गया नहीं हाथे जी अपने बीज वगैरह लावी रहा मोगा भावनी तो ई भी अपने नहीं मिला एट देर थकी थे तो कहीं नहीं, पर कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करवी। एक तो आप किसान भाई बहने तो जल्दबाजी करना के अड़ाड़ी में अपने आ काम अस्त अच्छो थत कि भी अपने नुकसान थी जाए नुकसान करवा वाले भी आप तो आनी बात ने अपने खास कर ध्यान रखू है आ कार्यक्रम ने मध्यम थी हमेशा अपने कह सके देखो आ खेतीवाड़ी नु काम है अपने ध्यान थे कि सावधानी थी करव है इन मैं मेहनत आप करूंगा आवड़े थे कि पेरूंगा तार आप तीन चार महीने सुधी इन मैं मेहनत करनी जरूरी है तो केम ने आवड़े पहले थी कि आप जी सावधानी राखी पड़े इन अनुसार आप काम करूंगा तो बढ़िया रहेगा। कि मैं देखो आज जाते आते आप बातचीत करें घर बोना ने भाई ने मन में थी गये भाई अमर तो फिर करव पड़ू आम शू एना सोरा मैं बैठे बैठे बोने बातें भी करी रही थी तो मन एम भी थी रू भाई आम हरते काम थे रू है पर भाई देखो जे भी काम है अपने कर अच्छू पानी वगैरह पड़ी जाए लगातार अपने लगे कि ना भाई संभावना नहीं आजकल तो देखो आ डिजिटल मामलो है तो मोबाइल की भी खबर पड़ी जाए कि भाई आज पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा बे दड़म पानी पड़ेगा इन अनुमान भी अपने लगी जाए तो इन अनुसार भी अपने जो काम करव कर सको तो अपने काम थायेगा कि भाई आ हरते हूँ करव हरते करव एने अनुसार रंगा तो बढ़िया रहेगा। कि भाई टेम टेम मत अपने बात भी थी जाए आ जानकारी भी मिली जाए मौसम की भी अपने खबर पड़ी जाए आजकल अखबार वगैरह में आ चेनल माध्यम देगी टीवी ने माध्यम देगी ने अपने कार्यक्रम ने माध्यम देगी हर तरह की अपनी जानकारी आली रहता कहो तो खास अपने इन्हीं बातों ध्यान रखी। बीजी अपने बात करो कि अपने जी भी खेतीवाड़ी में क्या खेतर में हूँ पेरव है कितलो पेराएगा कितलो अपने खातर जुएगा कितलो बीज जुएगा देखो आप इन भी अपने ध्यान रखू जरूरी है। क्योंकि आप कूबा को लई ने आई दूंगा पासो लै के नहीं लै भी दिक्कत पास पड़ी रहे भी नुकसान वालू मैं अपने ध्यान रखू कि भाई कई फसल में हूँ पेरव कि मैं देखो आप कई अलग अलग खेतर वगैरह रही तो अन्य खेतर में भी आप कोई मक्की पेरी दे कोई सोयाबीन पेरे कोई तुवर की खेती करे कोई शाक सब्जी वालू करे क्योंकि हर तरह की अपने नानी मोटी कोई भी आप फसल है अपने ध्यान रखते थे कि करव जरूरी है ना कि किसान भाई बहने खेतीवाड़ी आज अनाज वगैरह उगाड़ी रहे इन हाथ फल सब्जी भी खूब कर कहें क्योंकि फल सब्जी वाली खेती एवं है कि जी अपने नगदी फसल है तो अपने बे पैसा रोज ने जी काम ही इनते निकली जाए ना जे आप मक्की है सोयाबीन है धान की फसल वगैरह करो तो ये अपने मतलब बे महीने चार महीने पाकी ने अपने मल तो ये काम है अपने कोई भी मोटू कहीं काम करव तो इनमें भी निकली जाए अगली एट्ले हर तरह की अपने ध्यान रखू है नहीं कि देखो आप कही सकते भाई बीज वगैरह है मिट्टी वगैरह है अपनी मेहनत है खातर है खास इन्हीं बातों में ध्यान रखी दीदू तो अपने खेतीवाड़ी में कोई तरह की समस्या नहीं आएगा इतनी इतनी बातें ही इन ध्यान रखी खास कर अपने कॉस के भाई हर तरह की उन्नत किस्में होगी जुवी उन्नत जीव किस्म होगा जीव बीज में आप पेरवा काम करूंगा एनी दूरी में ध्यान रखूंगा तो इन्हीं अनुसार अपने पाकी ने मिलेगा ने अपने आना कार्यक्रम माध्यम देखिए अपने नवी नवी अच्छी जी किस्में साली रीते कही तो इन्हें भी बात करो कि भाई आ किस्म अच्छी रहे आ मौसम में आ काम करव जुए आटलू पेरव पड़े एने उपज भी आटली मिलेगा तो अपने हर जी अपने फसल अपने उगाड़ी रहता कहो लगाड़ी रहता कहो तो इन भी अपने आना कार्यक्रम में बातचीत करो हो तो खास आज भी आ बात करो कि भाई जी भी अरहर मतलब तुवर की खेती जी करव चाहिए रहो कि कहो तुवर दलहन फसलें भी खूब करो अपने अने आ धाननी फसलें भी करी रहे अनाज वगैरह भी करी रहता कहो तो खास आ मानसून की शुरुआत जून ने अंतिम सप्ताह तक लगाने जुलाई ने मध्यम तक जिम आ जुलाई तक 15 तारीख ने वेस में आ बुवाई नो आ समय खास करीने है कि ना भाई अपने ने जी पानी वगैरह अच्छू पड़ी जाए पेरवान लायक थी जाए तो इन अनुसार काम करे। बीजू है कतार की विधि भी बुवाई करते समय पंक्ति की दूरी की भी बात करो तो हाँ तक 65
આપણે સેન્ટીમીટરની દૂરી હોવી જોઈએ ને ખાસ પૌધા થકી પૌધાની દૂરી 15 થી 20 સેન્ટીમીટર રાખવી જરૂરી છે કેમ કે આ નાની નાની

0: सब अच्छो है, नहीं तभी तो कही रख भाई अनुभव फरी करो काम काज करो तो मैं स्वास्थ्य भी अच्छो होगा। तो एने बारे में हूँ कि भाई पेड़ पौधे लगा रहे थे कितना फायदा है तुम्हारी बताना।
1: पेड़ पौधे थे कि आपने मतलब एक तो आपने शरीर सही रहे पहली बात, एक बार आपने खर्च कर रहे तो आपने घर नो उपयोग सब्जी खावा नो सब आपने आयुर्वेदिक प्लांट है आयुर्वेदिक अपने घर में उत्पन्न कर आप खुद खाई सके एक एक फायदो है। इन बात फूल वालों है तो आपने फूल भगवान ने सारा बाजार में खरीदवा नहीं जाव पड़े सब्जी भी खरीदवा नहीं जावी पड़े
0: बिल्कुल
1: ने आप अपने घर आप वर्मी कम्पोस्ट खाद है अपने मिट्टी है घरे है वो तो सब लोगों ने मुस्को अपने घरे सब सब्जी भी उत्पन्न करो फूल भी उत्पन्न करो आम अमरूद भी बाजार की कीमत लाइन खाओ अपने घरे उत्पन्न करो बारहमासी फल फूड आपने लाभ लागू लगा रहा है।
0: बिल्कुल तो ये बात सही है नहीं ना हाथी तो हमारे घर में भी पशुधन वगैरह भी होगा
1: है ने
0: पशुधन है इन बारे में
1: आपने गाय भैंस बैल भी है बकरिया भी है।
0: अच्छा तो ये दूध वगैरह भी हलती
1: है दूध भी हलन
0: बस है नो भी तुम्हारे घर कितने दूध नहीं पैदावार कितनी गाय कितनी भैंस कितनी है
1: मतलब बे भैंस है बे गाय है।
0: अच्छा
1: हाँ तो बे था नाम में 10 किलो दूध भी सुमो डेली नो।
0: अच्छा 10 लीटर दूध तो के वैसा जो
1: गाँव में डेयरी है।
0: अच्छा गाँव में सही जाए डेयरी में हल लो
1: डेयरी डेयरी
0: चलो तो ये भी तुम्हारी आय
1: आपने वर्मी कम्पोस्ट खाद बनावा गोबर देखिए खाद भी बने कैसे बना के।
0: अच्छा तो तुम्हें कम्पोस्ट खाद बनाओ कम्पोस्ट खाद हरते बनाओ इन बारे में आप बताओ थोड़ो
1: कम्पोस्ट खाद है मतलब गड्ढा खरिया में ईटन मतलब बे भाई दसवा में
0: अच्छा
1: किराए बनाई है इनमें गोबर नाखिए गोबर में ठंडो पड़वा देव।
0: अच्छा
1: ठंडो पड़वा दे पे वर्मी कम्पोस्ट पेला
0: केचुआ
1: केचुआ नाखिया मैं।
0: अच्छा
1: हाँ ये थे कि आपने सब्जी में बिना का नाम में काम करो आखिरी भी हमें लाइन हमें खुद भी विसरी रही।
0: अच्छा वैसे तो देखो ये बे पैसों इन्हें भी फायदा मिल रहा है पशुधन आप राखी रहे तो इन्हें भी जो गोबर वगैरह है
1: हाँ,
0: दवाई वगैरह भी तुम बनाता होगा
1: दवाई भी बनाओ
0: देसी दवाई तो कई तरह की दवाई बनाओ इनमें कई
1: देसी दवाई हमें काम है एक तो नींबू रहती अपने कड़वा नीम आवे नीम के निम्न नींबू नहीं लगे एने तक इनमें अपने पीसी बारीक पीसी पानी में बढ़िया मिलाई इस स्प्रे कराते सब जानवर मरी जाए।
0: अच्छा तो आज सब्जी वगैरह आते हर काम आ जाए
1: के नहीं भी माता काम आगे नींबू नहीं मतलब कड़वा नहीं थकी कई भी बीमारी लगेगा
0: तो कितना वक्त लगाड़ी पड़े कितना वक्त साठवो पड़े न हूँ तरीको बताओ
1: ये 15 दाड़ा गेप में साठो।
0: अच्छा 15 दाड़ा में आप एक बार बीमारी खत्म तो फिर करी
1: नहीं दादा सो तो 7 दिन 7 दाड़ा में एक बार।
0: अच्छा 7 दाड़ा में भी आप करी सको जीव जीव आप लगी वगैरह कोई हो तो आप इतनी बढ़िया जानकारी आली
1: हमला गया भी घणो घणी धन्यवाद आपने घर में कोई भी है आप घरेलू उपयोग में अच्छो उपयोग लो घर में गाय भैंस खाद भी उपयोग लो सब्जी भी उत्पन्न कर सको खेती बाड़ी में भी आपने ज्यादा खेती हो तो आपने फटफुट प्लांट भी लगड़ी सको।
0: बिल्कुल देखो आप खेती बाड़ी साइड में भी क्या कर दूंगा तो देखो खेती तो 2 महीने 4 महीने में आपने काकी ना आना जाए जाए इन बात तो खेतर खाली तो आपने हर जगह माते जी खाली जगह पड़ी थी की पड़तल ए खरी आप फल फूल लगाड़ दूंगा तो अपने हर समय काम अंबावरी सिंचाई फल वगैरह बारहमासी रही अभी तो सब्जी भी वो रही कि 12 महीने अपने सालों वाली है एटले वो भी नहीं कोई सीजन में थाय एटले भी अपने करी सका अपने इतनी बढ़िया बात करी रहा था धन्यवाद आपने
1: धन्यवाद।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
3: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
3: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के

0: लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देखो किसान भाई बहनों आने भाई कितनी बढ़िया जानकारी आली पेड़ पौधों ने बारे में नेंते की देशी खाद वगैरह है, दवाई वगैरह है, तेनू भी अपन करव जरूरी है। निजी यार देखो पेड़ पौधे वगैरह ने आप कह सकते हर सब्जी वगैरह या पेड़ पौधे ही 12 महीने बत्री घड़ी सालवा रहे तो कोई फल सब्जी अनाज उगाड़े, कोई फलों की खेती करे, कोई फूलों की खेती करे, तो अपने हमेशा पर्यावरण बसाव रखू जरूरी है। ने अब तो खास अपने विशेष दाड़ा भी साले राज्य वन महोत्सव भारत में हर साल 1 जुलाई तक लगाड़ी ने 7 जुलाई तक आप मनाव ने खास एक खास सप्ताह वो है कि

0: हाथ जुलाई तक आपने मनावो। ने खास एक खास सप्ताह है वो है कि पूरा वर्ष भर इन वृक्षारोपण नु उत्साह नु एक तरह से कि आपने एक माहौल बनी जाए कि ना भाई आपने पौधा पेड़ पौधा लगाड़वा ही ने हरियाली बना दिए। ने खास आपने तेरा खेती बाड़ी करवा वाले किसान भाई बहने तो हमेशा नु महत्व महोत्सव नु उत्सव नु उद्देश्य सा है कि वनत की महत्व ने बारे में जागरूकता नु बढ़ावु है ने वनों की कटाई जी थी रही है इन्हें रोकवु है ने वधारे थी कि वधारे पेड़ आपने लगाड़वो है ने पर्यावरण नु संरक्षण करवू है तो आपने आ जी भी हर तरह थी कि आ समस्या आई रही अतिवृष्टि अनावृष्टि वगैरह हरकू थी रू तकू है कि आप हर बिन मौसम बरसात थी जाए हूं थी रू है कि भूकंप आए ने ई हर तरह थी कि आप बसा वर्क करवा वर भी आप बेटा तक हाँ तो आ एक वन महोत्सव चाली रो तक है जेने आप सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कर सको जागरूकता कार्यक्रम कर सको ने पेड़ पौधा वितरण करी ने भी हर तरह थे कि आप इनने लोगों ने जागरूक करूंगा आप खुद भी लगाड़ूंगा ने बीजे ने भी अपने कहूंगा कि भाई हर तरह थे कि आप सरकारी भवन ने गैर सरकारी भवन कॉलेज ही सामूहिक रूप से पेड़ पौधा लगाड़ो जितना थी कि वधारे पेड़ पौधा लागेगा तो एटलू बढ़िया आ पर्यावरण अच्छू रहेगा। केम के अगर सप्ताह जी मना रो तक हूँ तो वधारे ई सेकंड में देखो अपने बारिश नो समय है जितलो भी पेड़ पौधा लगाड़ेगा तो अपने एटले समस्या नहीं आवेगा पानी वगैरह पावा में भी दिक्कत नहीं आवेगा ताप वगैरह भी नहीं जेवो इनने पर्यावरण जुएगा एवं मिली जाएगा। केम के अपने गर्मी दाड़ा में पेड़ पौधा वधारे लगाड़ दो तो अपने एनु ध्यान नहीं राखी सको ने पानी वगैरह मले कि नहीं मले तो जीव हत्या थी जाए एक तरह थे कि आप इनू मोटू नहीं कर सकता पर आ समय वो बराबर सारी रो कि आप इनू ध्यान राखी सके अच्छी जगह माते अपने के भी लगाड़ दंगा तो ये अपने मोटो थी जाएगा तो मोटू थाएगा तो हर तरह थे कि इन्हें हर चीज कोई भी चीज नहीं रहे कि कई काम नहीं आवेगा फल सब्जी लकड़ी वगैरह है इन हवा है पत्तो वगैरह ने हर तरह थे कि आप इन ध्यान रखेंगे ने आपो भी स्वस्थ नु बल्ले भी अच्छू है बीजे लोगों ने बल्ले भी अच्छू है ने पर्यावरण नु भी अच्छू रहेगा तो आनी खास बात नु आपने ध्यान रखू कामकाज करव जरूरी है तो सी ठीक रहेगा ने आप कही भाई हर तरह थे कि आप खेती बाड़ी करवा वाले किसान भाई बहने तो अपने हर समय नु ध्यान रखू है हर सीजन नु ध्यान रखू है गर्मी ने टाइम मैं पानी ने टाइम मैं हर मौसम नु आपने ध्यान रखूंगा तो बढ़िया रहेगा ने भाई बहन देखो आनी बात आप आगे भी करूंगा पर मारू मन थी रू कि कच्छ शु बातचीत ने हाथे एक गीत भजन थी जाए ने पसे आगे बात करा तो किम नहीं आप भजन हमरा ने पसे आगे बात करा।
1: अरे सतगुरु जो जी जुगत में अरे मुकत स्वरूपी हंस हरि राम का गा मिला रे तुरत बदलिया वंश।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान श्रोताओं ने सुना उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इपको राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चवला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: खेतीबाड़ी प्रोग्राम सुबह रहा सारा श्रोता ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही अदिति बहन आपने भी राम राम।
3: नरपत भाई आपने घणो घणो राम राम और सुनवाला सबला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरे नमस्कार और राम राम सा। नरपत भाई हर दिन कुछ विशेष हुआ करे।
2: बिल्कुल।
3: और विशेषतावा के सागे सागे बात करा, आज एक विशेष दिन छे सहकारिता दिवस।
2: बिल्कुल, सहकारिता दिवस है आज और या सहकारी संस्था ने जो अपने समाज के लिए आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाव जे।
3: जी सर।
2: या संस्थान जो अपने किसान छे बानो सस्ता ऋण दिलाव जे, उन्नत बीज उर्वरक कृषि उपकरण उपलब्ध करावे छे और ग्रामीण क्षेत्र में जो आप डेयरी

0: उत्पादन करा, दूध उत्पादन, हस्तशिल्पी, आपने मत्स्य पालन भी करा या छोटो मोटो को लघु उद्योग लगावा, बी के विकास में भी आपने जो सहकारी समिति है जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहे।
1: जी सर, हर बरस जुलाई का पहला शनिवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाए छे। और जी आप उद्देश्य बताया है कि मनखाना यह बतावो कि सब मिलर काम करा तो विकास की जो राह छे, रास्तो छे, वो आसान बन सकेलो। सहकारिता को अर्थ ही आई छे कि सबको साथ, सबको प्रयास और सबकी प्रगति हो सके।
0: बिल्कुल, आज प्रतिस्पर्धा युग बनी में सहकारिता को बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब बढ़ती महंगाई आएगी, बेरोजगारी होगी, आर्थिक चुनौतियों को सामना करने अपने सामूहिक प्रयास करने की ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहाँ कृषि डेयरी होगा अन सब में अपन मिलजुल कराना तो अपने पर्यावरण संरक्षण हो लो, जल संरक्षण हो लो और स्वस्थ अभियान, सामाजिक विकास का कार्य में भी सहकारिता की भावना बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाए और आप सब मिलकर काम कर ला जब भी अपने विकास अधिक से अधिक हो गए।
1: जी सर, बिल्कुल सही कह रहे छो कि सहकारिता ही आपने सिखावा छे कि एकला विकास करवा की तुलना में, एकला आगे बढ़वा की तुलना में अगर आप सब मिलजुलर अगर विकास की राह पे चला, सब मिलर जुलर प्रयास करा तो आप चोखो विकास कर पावला, अपना समाज ना आगे बढ़ा पावला, अपना देश की उन्नति और तरक्की जब ही संभव छे जब आप सच्चा मनसू प्रयास करा। और सा एक प्रयास मारो भी छे कि चोखो सो गीत संगीत आपने सब ने सुनवाऊ जिससे आपको जो मनोरंजन छे वह भी चालतो रहे, होतो रहे।
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: श्रोताओ आपा सुने बार केसर की क्यारी बहुत ही चौकसो गई। तब आपा जानकारी की तरफ चला कि मूंगफली में लगने वाला रोग और उबा का नियंत्रण जो की जानकारी दे रहे थे सुनील कुमार शर्मा।
1: श्रोताओ कार्यक्रम में आज हमारे स्वागत है सुनील कुमार शर्मा। आप विषय विशेषज्ञ छे और आपने जानकारी देवा खातिर आया छे मूंगफली में लागबाड़ा रोग और आका नियंत्रण आपा किन भांति कर सका। तो सुनील कुमार जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: तो आपा मूंगफली में लागबाड़ा रोग और वाका नियंत्रण का बारा में बात कराला, लेकिन पहली शुरुआत करा मूंगफली की खेती का बारा में, आप बताओ सा विस्तार सु।
2: तो देखिए मैडम, भारत में दलहन तिलहन खाद्यान्न तथा नकदी फसलों की व्यापक रूप से खेती की जाती है। इनमें मूंगफली खरीफ मौसम की एक प्रमुख तिलहनी फसल है जिसका आर्थिक और पोषणीय महत्व बहुत अधिक है। मूंगफली की किस्में दो प्रकार की होती है, पहली गुच्छेदार जिन्हें बंच प्रकार की बोलते हैं जिनके पौधे सीधे बढ़ते हैं, तथा दूसरी फैलावदार जिनकी शाखाएं भूमि की सतह पर फैलती है। इसकी खेती मुख्य रूप से रेतीली तथा हल्की दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों में 45 से 50% तक तेल की मात्रा पाई जाती है और यह प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्च तेल एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण मूंगफली तिलहनी फसलों में विशेष स्थान रखती है तथा खाद्य एवं तेल उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।
1: जी, इतना सारा पौष्टिकता सु भरपूर गुण बताया मूंगफली का मायने, पर ये का मायने लागबाड़ा जो रोग छे वो इनकी जो गुणवत्ता छे इमें कमी ले आवे छे। तो आका जो रोग छे वाका बारा में बताओ और आको नियंत्रण क्या भांति आपा कर सका वह भी बताओ सा।
2: तो अपन इनके मूंगफली में जो लगने वाले रोग है उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो

0: अच्छा पहले मैं रोगों के नाम बताता हूँ
1: जी।
0: कोलर रोट जिसे कालीजड़ रोग भी कहते हैं, इसके बाद सेकंड रोग है टिक्का रोग, इसके बाद जो तीसरा रोग है रष्ट रोग है, फिर ब्लड नेक्रोसिस रोग है और पीलापन है, ये इसके रोग है
1: जी। नाम बताया, अब आपसे विस्तार से जानबो चाहवेला या रोगा का बारा में और आका नियंत्रण का बारा में।
0: तो आपा सबसे पहले बात करेंगे कोलर रोट या कालीजड़ रोग के बारे में, लक्षण कैसे देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं
1: जी।
0: यह रोग मूंगफली की फसल का मुख्य रोग है। यह रोग बुआई के बाद मूंगफली की फसल में कोलर रोट एवं जड़ गलन रोग से काफी नुकसान हो सकता है। इस रोग के प्रभाव से पौधे का निचला भाग काला पड़ने लगता है तथा धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है और रोगग्रस्त पौधे पर काली फफूंद भी दिखाई देती है। यह रोग फसल की बुआई से लेकर 40 दिन तक ही आता है, इसके बाद यह रोग नहीं आता है। अब हम इस रोग के नियंत्रण के बारे में बातचीत करते हैं। इस रोग की रोकथाम के बुआई से पूर्व 15 दिन पहले 4 किलोग्राम ट्राइगोडर्मा पाउडर को 400 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर खेत में डालें।
1: जी।
0: साथ ही बुआई के समय बीजों को 10 ग्राम ट्राइगोडर्मा पाउडर प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए और फसल चक्कर अपनाना चाहिए। अब अपन जो अगला रोग है टिक्का रोग, उसके बारे में बात करते हैं। इस रोग से पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो धीरे धीरे आकार में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं। इस रोग का अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां पीली पड़कर समय से पहले झड़ने लगती है जिससे प्रकाश संश्लेषण कम होता है और उपज में भी कमी आती है। अब इस रोग के नियंत्रण के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले खेत की सफाई रखें और संक्रमित अवशेष नष्ट करें। खेत की बुआई पूर्व गहरी जुताई करें। फसल चक्कर अपनाएं। रोगी पौधे को फसल से उखाड़कर अलग कर देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में मेनकोजेब 75 WP का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर तथा बाद के छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अब अगले रोग के जो रष्ट रोग है इसके बारे में बातचीत करते हैं। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे उभरे हुए धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और रोग बढ़ने पर प्रभावित ऊपरी परत फट जाती है जिससे पत्तियों को नुकसान पहुंचता है। इस रोग के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों को बुआई पूर्व 0.1% घोल की दर से विटावैक्स या प्लांटवैक्स दवा से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बुआई करें और साथ ही फसल चक्कर अपनाना चाहिए। रोगी पौधे को फसल से उखाड़कर अलग कर देना चाहिए। अब हम अगले रोग जो ब्लड नेक्रोसिस रोग है इसके बारे में बात करते हैं। यह है मूंगफली की फसल में लगने वाला एक गंभीर विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः मूंगफली में ब्लड नेक्रोसिस वायरस द्वारा होता है। यह रोग थ्रिप्स नामक कीट से फैलता है। रोगग्रस्त पौधों की नई पत्तियां एवं शीर्ष कलिकाओं पर नेक्रोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों पर पीले भूरे अथवा काले धब्बे बन जाते हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। शीर्ष भाग सूख जाता है और अधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं या पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इससे फलियों का विकास प्रभावित होता है तथा उपज में भारी कमी आती है। अब इस रोग के नियंत्रण के बारे में बातचीत करते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे को प्रारंभिक अवस्था में उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। रोग के वाहक थ्रिप्स कीट के नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL 0.3 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करना लाभकारी होता है। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि कई बार खरपतवार इस विषाणु के वैकल्पिक पोषक का कार्य करते हैं। समय पर कीट नियंत्रण एवं स्वच्छ खेती अपनाने से रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं पीलापन की। मूंगफली की फसल में पीलापन पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। इससे फसल पीली पड़ जाती है व उपज में कमी आती है। जिन खेतों में मूंगफली में पीलापन लगता है वहां पर 3 साल में एक बार बुआई से पहले 250 किलोग्राम गंधक या 25 किलोग्राम फेरस सल्फेट के 0.5% घोल व नींबू का रस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 बार छिड़काव करें। एक फूल आने से पहले करें व दूसरा फूल आने के बाद करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपा जानकारी ले रहा छा सुनील कुमार शर्मा जी से। आप विषय विशेषज्ञ छे और आपा जानकारी किन विषय पे ले रहा छे आपने बताऊं कि मूंगफली में लाग बाड़ा रोग और वहां का नियंत्रण का बारे में। आभार आपा जानकारी ली। मूंगफली में कौन कौन सा रोग लागे छे, आपा वापे किन भांति नियंत्रण कर सका छा, सागे ही आपा मूंगफली की खेती का पौष्टिक तत्व के बारे में भी जाना।

0: कौन कौन सी किस्मत छे वाके बारे में भी जाना, लेकिन सुनील जी कई बार देखवा में आवे छे कि कई कीट भी लाग जाए छे, तो ओकर सा बाहर बढ़ाने वा कीट से अवगत कराओ सा।
1: अपन हम बात करेंगे कि मूंगफली में लगने वाले कीट।
0: जी,
1: मूंगफली में सफेद लट व दीमक मुख्य कीट है जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः किसान भाइयों को इनकी रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए, अतः इसके बारे में वार्ता करते हैं। तो सबसे पहले सफेद लट नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रति किलो बीज में 3 मिली इमेडा क्लोरोपीड 17.8 SL दवा मिलाकर उपचार करें तथा मूंगफली की खड़ी फसल में सफेद लट नियंत्रण हेतु प्रोड भृंग बाहर निकालने के 20 से 25 दिन बाद सिंचाई के पानी के साथ इमेडा क्लोरोपीड 17.8 SL 300 मिली या क्यूनोलफोस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से देवे और आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद पुनः दोहराए। अब हम बात करते हैं दीमक का नियंत्रण। तो दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोफाई फोर्स रसायन की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए तथा दीमक हेतु खड़ी फसल में 15x15 मीटर की दूरी पर 2.5 फीट लंबे बांस या सफेदे के डंडे खड़े करें, जिसे अनावश्यक रसायनों के उपयोग से बच सके व दीमक भी नियंत्रित हो जाए।
0: मूंगफली में सिंचाई की बात करा तो वहाँ के बारे में बताओ सा।
1: तो अब अपन मूंगफली में सिंचाई कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मूंगफली की फसल में सामान्यतः 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है जो भूमि की प्रकृति वर्षा तथा मौसम पर निर्भर करती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए। फसल की फूल आने पर व पेगिंग तथा फली का विकास अवस्थाएं जल की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होती है, इसलिए इन अवस्थाओं में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक है। सिंचाई हल्की एवं आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ों एवं फलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतिम सिंचाई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक पूर्ण कर लेनी चाहिए, इसके बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फसल के पकने में देरी होगी, फलियों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
0: सुनील कुमार जी, आप इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिया कि कौन कौन सा रोग लागा छे, वहाँ पर नियंत्रण कहीं करा, कौन सा कीट देखभाल में आवे छे, और मूंगफली की सिंचाई में कितना दिन आपको आतरा पन रखना चाहिए, ये बात भी बताया। अब चलता चलता आप कोई कर्जा बाहर बढ़ाना संदेश देना चाहो तो आपको स्वागत छे।
1: तो मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। अपने मूंगफली में जो निराई गुड़ाई करते हैं वह खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ।
0: जी,
1: मूंगफली की बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई तथा 30 से 35 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे फसल से पोषक तत्व जल तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पेगिंग की अवस्था में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मिट्टी में प्रवेश कर रहे पेग सूत्र एवं विकसित हो रही फलियों को क्षति पहुंच सकती है। गुड़ाई के समय पौधे के आसपास हल्की मिट्टी चढ़ाने से पेगों का मिट्टी में प्रवेश सुगम होता है तथा फलियों का विकास अच्छा होता है। खेत को प्रारंभिक 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आवश्यकता होने पर खरपतवार नियंत्रण हेतु शाकनाशियों का उपयोग भी किया जा सकता है।
0: श्रोताओं, अब आप जानकारी लिया मूंगफली में लाग वाला रोग और वहाँ पे नियंत्रण आप किन भांति कर सका, और आपने जानकारी देबा खातिर आया सुनील कुमार शर्मा, आप विषय विशेषज्ञ छे, इतनी बढ़िया आप जानकारी दिया, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: बहुत ही चौकी जानकारी दिया कि मूंगफली में लगने वाला रोग और बाका नियंत्रण के बारे में सुनील कुमार जी शर्मा रा की जानकारी दे रहे थे। अदिति बहन तोथा को खूब खूब धन्यवाद। तो हम सुना देव चौकसो गीत।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: अनीता मीणा जी की मीठी सी आवाज में इतल पीथल आपा गीत सुनिया। इके सागे ही खेतीबाड़ी कार्यक्रम को समय पूरा होतो जा रहे है। देव अदिति ने
1: और नरपत सिंह ने
0: आज्ञा चाला और करा
1: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। अब सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण व उद्घाटन समारोह किया गया, उस पर प्रसारित की जा रही है रेडियो रिपोर्ट।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राजस्थान के पचपदरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से

0: वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मुंह से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी हैं। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई, मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई, पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना का की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब यह हालत बदली और यह परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के विकास समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में बना रहे थे, तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में पाथवाड़ा में आपने माई पाथवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित

0: 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
1: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ की लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल भाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
2: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
1: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
3: रेगिस्तान का रत्न एचपीसीएल, राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
1: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
4: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ, उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर,

0: सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
2: जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।

0: भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास के कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जुदाई के इस गीत से।

श्रोताओं, समीर का लिखा नदीम श्रवण के संगीत से नवाजा गया फिल्म जुदाई का आप अभी इस गीत का आनंद ले रहे थे, जिसे स्वर दिया अलका याग्निक और अभिजीत ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म जिद्दी से।

0: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे फिल्म जिद्दी का ये गीत, जिसे स्वर दिया ललित सेन और साथियों ने, संगीतबद्ध किया दिलीप सेन ने और गीत लिखा समीर ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सरफरोश का ये गीत।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता।

श्रोताओं तकनीकी खराबी की वजह से आपको बताया गया गीत प्ले नहीं हुआ, उसकी जगह आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने, लिखा अनजान ने और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम का वक्त यहीं पर पूरा होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी रात्रि के 8:30 बजने को हैं, जिसमें आप सुनेंगे हमारे रिले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, न्यूज एट 9 बजे, तत्पश्चात 9:15 पर उर्दू में समाचार, 9:30 बजे राष्ट्रीय पत्रकारिता कार्यक्रम साहित्य भारती, और 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने कोहोस्ट शक्ति सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
1: नमस्कार नवीन।
0: शक्ति, खेल प्रेमियों और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज उस शख्स पर थी जो इतिहास रचने जा रहा था, और उसने आज कर भी दिखाया जब 145-46 की स्पीड से आ रही उस तेज तर्रार गेंद को उसने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के जॉफ्री आर्चर को बता दिया कि ये बल्ला रुकने वाला नहीं है। वैभव सूर्यवंशी।
1: बिल्कुल नवीन, आज की पहली खबर है वैभव सूर्यवंशी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया दूसरे टी20 मुकाबले में,
0: और वही महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होगी। और शक्ति, क्रिकेट में ही अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर महिला क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में श्रीलंका का दौरा करेगी।
1: बिल्कुल, क्रिकेट के बाद नवीन बात करते हैं फुटबॉल की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले अब प्री क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंच गए हैं, और आज कनाडा का सामना मोराको से और पराग्वे का सामना फ्रांस से होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
0: शक्ति, फुटबॉल के बाद बात स्क्वैश की करेंगे, जहां बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। भारत की तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
1: जी नवीन, आपने कोर्ट की बात की तो बात होगी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट की भी, जहां आज कई मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
1: जी नवीन, और भारत ने इस समय तक समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव किए गए और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
0: सुनते हैं मुकेश की ये खास रिपोर्ट।
2: लगातार अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही 15 वर्षीय वंडर बॉय ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसमें सबसे खास है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना। सचिन ने नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष 205 दिन थी। वे तब से भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने रहे हैं। लेकिन वैभव ने आज केवल 15 वर्ष और 99 दिन की आयु में ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वैभव आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में पहले ही सबसे कम

0: में खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। आईपीएल के हालिया सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने केवल 35 गेंद में शतक जड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, आज क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार खत्म हो गया जो हमें आयरलैंड से लगातार क्रिकेट प्रेमियों की एक जिज्ञासा थी कि कब सूर्यवंशी मैदान में उतरेंगे, कब कोर्ट में उतरेंगे और कब पहला छक्का उनके बल्ले से हमें दिखाई देगा, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया।
2: जी बिल्कुल, आज जब तिलक वर्मा ने उनको अपनी डेब्यू कैप सौंपी तो वो जो उनके चेहरे पे इमोशंस थे वो साफ बता रहे थे कि ये इंतजार सिर्फ हमारे जहन में नहीं था, हमारे मन में नहीं था, इंतजार शायद वैभव को था, उनके बल्ले को था। और गेंद जब जोफ्रा आर्चर की बाउंड्री पार गई है तो शायद सारे जवाब मिल गए।
1: 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, हालांकि केवल 10 बॉल ही खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसमें एक 15 साल का लड़का 146 की स्पीड से खेलता है, 10 बॉलें खेलता है, 14 रन बनाता है और छक्के से शुरुआत करता है।
2: जी बिल्कुल, और शायद दर्शक यही देखने आए थे, 2 छक्के लगे, लेकिन कह सकते हैं नवीन यह अभी ट्रेलर है और एक बहुत बड़ी फिल्म बाकी है।
1: 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए थे वैभव सूर्यवंशी।
2: बिल्कुल, और इसके एक साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया था मात्र 13 साल की उम्र में नवीन।
1: और अगर आईपीएल की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का इतिहास भी रचा था और सबसे तेज भारतीय शतक भी उन्होंने बनाया था।
2: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखने में चोटन लगे और घाव करे गंभीर।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही घाव करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि, और तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि भारत आज का मैच शायद जीतेगा और अगले मैच में वैभव और तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह सामने आएंगे।
2: जी बिल्कुल,
1: बात महिला क्रिकेट की करते हैं। शक्ति, क्रिकेट की दुनिया में अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर यानी डेफ महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका का दौरा करेगी और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलेगी। यह दौरा बधिर महिला टीम का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में पदार्पण होगा।
2: जी नवीन, 5 मैचों की इस ऐतिहासिक T20 अंतर्राष्ट्रीय बधिर टीम की कप्तानी काजल धवन करेंगी, जबकि निदा जबी शेख उपकप्तान होंगी। और भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सिलसवा पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेलेगी।
1: अब आपको सीधा लिए चलते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की ओर। इस विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होगा जहां ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है और इंग्लैंड अपनी धरती पर कभी नहीं आ रही। और शक्ति, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वीं बार चैंपियन बनने का इतिहास रचने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड अपनी जमीन पर अजय रहने की भी कोशिश करेगा।
2: बिल्कुल, 2009 से लेकर 2026 T20 विश्व कप फाइनल इंग्लैंड आज तक अपनी जमीन पर कोई मुकाबला नहीं हारा है और ऐसा ही रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगा। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर 11 मुकाबले खेले हैं और सभी 11 के 11 में उसको जीत मिली है। तो यानी एक तरफ फाइनल में 8 बार अपना फाइनल खेलने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होगी 5वां फाइनल खेलने वाली है इंग्लिश टीम। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यही कहानी इंग्लैंड की भी रही है। नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी में मेजबान टीम अजय रहते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। हालांकि कल इन दोनों में से किसी एक टीम के विजय रथ पर विराम लगना तय है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। वहीं 20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 2 मुकाबले टाई रहे हैं जबकि 1 मैच का नतीजा नहीं निकल सका है। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबले में भी कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधा फुटबॉल के उस महाकुंभ की तरफ चलते हैं जहां पे राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रखे हैं। लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये फीफा महाकुंभ यानी विश्व कप अपना पहुंच रहा है। हालांकि कल अर्जेंटीना और काबो वर्डे ने कड़ी टक्कर हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच 3-2 से अपने नाम कर जीत का सिलसिला उसने बरकरार रखा है।
2: नवीन, मिस्र ने भी इतिहास रचा है और अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जहां मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार डिफेंस और अटैकिंग का एक कॉम्बिनेशन दिखाया और प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। सुनते हैं कल खेले गए मैचों का हाल।

0: फीफा विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 की रेस के सभी स्लॉट फिक्स हो गए हैं। राउंड ऑफ 32 के अंत मुकाबले में कोलंबिया ने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हरा दिया और मैच के 14वें मिनट में ही जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और कोई गोल नहीं होने दिया। एक अन्य मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काबो वर्डे के खिलाफ एक उलटफेर से बाल बाल बच गया। म्यामी स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इसके बाद काबो वर्डे के डेराय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कारबेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर किया। इसके बाद अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया। मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। इससे पहले कल मिस्र ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमों की तरफ से 1-1 गोल किया गया। शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रयास विफल किए जबकि मिस्र ने 4 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए पहली बार अंतिम 16 का टिकट पक्का किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन कल एक बहुत बड़ा उलटफेर होते होते बच गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही अर्जेंटीना जीत गया हो, लेकिन दिल जीता काबो वर्डे ने।
2: जी बिल्कुल, और एक वो गलती जो हुई मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस से, जब अपने ही गोल्फ कोर्ट में उनकी गेंद चली गई लियोनेल मेस्सी का एक गोल बचाते बचाते। लेकिन जो अभियान शुरुआत से पहला मैच स्पेन के साथ ड्रॉ खेलना हो या उसके बाद जिस तरह से टीम खेली, शायद कोई फुटबॉल प्रेमी नहीं कहेगा नवीन कि ये टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही है।
1: शक्ति, ये इतिहास रहा है फीफा विश्व कप का कि कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी टीम ऐसी बाहर निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है, और शायद ये कल जो मैच हुआ था वो सबको चौंका देने वाला मैच होता कि मेसी के रहते अर्जेंटीना हार जाती। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा मैच खेला गया और मैच अंतिम समय तक गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें आपको मैच खेलना पड़ा। अगर यही परफॉर्मेंस अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
2: जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को वापस एक बार अपने परफॉर्मेंस की तरफ देखना होगा और मूर्तियों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो इस टूर्नामेंट से निकल के आई, इस मैच से निकल के आई, कि इस पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है काबो वर्डे।
1: जी, फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात से शुरू हो रखे हैं और आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ह्यूटन स्टेडियम में होगा कनाडा और मोरक्को के बीच, और दूसरा होगा फ्रांस की टीम का, और फ्रांस जो है इस बार खेलेगी पराग्वे से।
2: जी बिल्कुल, और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होती है एम्बापे की। किलियन एम्बापे सबसे आगे हैं गोल्डन बूट की रेस में और टीम को सबसे अधिक उम्मीदें टीम के स्टार खिलाड़ी से होने वाली हैं।
1: जी शक्ति, पैराग्वे और फ्रांस के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और इसमें फ्रांस का जो पलड़ा है वो लगातार भारी रहा है। फ्रांस ने 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, और फ्रांस को पैराग्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। अगर आपको ये जीत देखनी है, ये मैच देखना है, तो आज इंतजार करना होगा।
2: जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले एक और बहुत शानदार मुकाबला होना है जो कि कनाडा और मोराको के बीच खेला जाना है। दोनों टीम के अगर आपस के स्कोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले गए हैं और मोराको का दबदबा थोड़ा सा भारी है, 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ किया है नवीन।
1: जी, फीफा विश्व कप के इतिहास में दोनों की दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड कप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया था। अगर आप इन दोनों मैचों को देखना चाहते हैं तो सुबह 2:30 यानी 2:30 बजे पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे, और आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम उस ग्रास कोर्ट पे जिसका इंतजार टेनिस प्रेमियों को शुरू से ही रहता है। जून का महीना हो, जुलाई का महीने की शुरुआत हो, जून का आखिर हो, तो सब रुक करते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जहां पुरुष सिंगल्स में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के मार्कस गिरा से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एजी मिनार ने अमेरिका के जेट्री स्वाजदा को 6-2, 5-7, 6-0, 6-4 से हरा दिया।
2: जी, और महिला सिंगल्स की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक का मुकाबला फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा इला से जारी है, और एक अन्य मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रॉय बकीना ने बेल्जियम की एलिस मार्टिस से उनको हार का सामना करना पड़ा 7-6, 6-1 से।
1: शक्ति, कल इस टूर्नामेंट में एक शानदार मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरकनेक को 3 घंटे चले मुकाबले में

0: 7564167 से हरा दिया.
1: Djokovic, a scare from Arthur Rinderknecht, but it is Novak Djokovic who survives and will celebrate again and take the acclaim of the crowd one more time.
2: और इस जीत के साथ ही जोकोविच विंबलडन के पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक जीत के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी पर आ गए हैं. अब उनसे आगे सिर्फ मार्टिना नवालितोवा हैं जिनके नाम पर 120 जीत दर्ज हैं.
0: और अब बात स्क्वैश की. स्क्वैश में तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया और मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हराकर यह खिताब अपने नाम किया. वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन चलते चलते अब तक का स्कोर सुन लेते हैं शक्ति से.
2: जी बिल्कुल. और 19 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है. भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा चुकी है.
0: तो आज के इस अंक में लिस्टर बस इतना ही. उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा. इजाजत दीजिए मुझे नवीन और मेरे साथ शक्ति को. नमस्कार.

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन

0: और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के बचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना Tier 2 और Tier 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक

पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के

0: रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी तो दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।

0: हमको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।
1: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, हमरी नजर भर जाएगी, हमरी नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर।
2: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू,

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला कारीगर नवरंग।

0: चित्रगुप्त के लिए नवरात्रि, श्री गणेश विवाह, लक्ष्मी पूजा, नीलमणि, साक्षी गोपाल,
1: यमुना के नादे फिर मिल कर दादे जहां बांसुरी बजाए जसो।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और

बसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती देश की
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 10 बजे अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का पहला गीत कुमार सानू की आवाज में, फिल्म आओ प्यार करें से। श्यामराज का लिखा गीत और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है।

सैयद कादरी से लिखा गीत अभी आपने उदित नारायण की आवाज में सुना, फिल्म जहर। समय अंतिमित फिल्म संगीत का फिल्म कयामत से कयामत। अलकाजी और उदित नारायण की मिली जुली आवाज हैं। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

0: अलका जी और उदित नायक के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी वासवाड़ा का FM माही चैनल FM बेंडिक 1.3 MHz पर रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोगो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोगो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत

0: को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM इंडेक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।